0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, अटलांटिक महासागर से गुजर रहे यात्री जहाज में हंटा वायरस संक्रमण के प्रकोप ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हंटा वायरस प्रकोप से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम कम है और यह कोविड जैसी किसी नई महामारी की शुरुआत नहीं है। हंटा वायरस संक्रमण के चपेट में आए क्रूज जहाज एमवी होंटियस से सभी यात्रियों और नाविक दल के सदस्यों को स्पेन के द्वीप टेनेरीफ में सुरक्षित उतारने का कार्य पूरा हो गया है और अनेक यात्री अपने देश पहुंच चुके हैं। यात्रियों को उनके देश रवाना किए जाने के प्रयासों को यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के सहयोग से स्पेनी प्रशासन, रोग रोकथाम व नियंत्रण के लिए यूरोपीय संघ और अनेक देशों की सरकारों ने साथ मिलकर पूरा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि इस जहाज पर अब तक 11 संक्रमण मामले सामने आए, जिसमें से 9 की प्रयोगशाला में पुष्टि हो गई और 3 यात्रियों की मौत हुई। 2 अन्य मामलों में अभी परीक्षण के बाद कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकल पाया है और इसकी जांच की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस आपात राहत टीम के साथ टेनेरीफ में पहुंचे और उन्होंने स्पेनी सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि योजना के अनुरूप यात्रियों को सुरक्षित उतारने का कार्य संपन्न हुआ है। डॉक्टर टेड्रोस ने स्पेन, यूरोपीय साझीदारों, टेनेरीफ के स्थायी प्रशासन और नाविक दल के सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह एकजुटता की विजय है। यात्रियों का अंतिम समूह कैनेरी आइसलैंड से विशेष उड़ानों के जरिए अपने देशों के लिए रवाना हो गया। नाविक दल के 30 से अधिक सदस्य और 2 स्वास्थ्य कर्मी अभी जहाज पर ही मौजूद हैं और यह क्रूज अब नीदरलैंड के रोटरडैम में स्थित अपने मूल बंदरगाह की ओर रवाना हुआ है। हंटा वायरस संक्रमण चीजों को कुतरने वाले जानवरों जैसे संक्रमित छोटे या बड़े चूहों के मल मूत्र या थूक के संपर्क में आने की वजह से फैलता है। किसी संक्रमित के संपर्क में आने के बाद मनुष्यों में इसके लक्षण 1 से 6 सप्ताह के भीतर दिखाई देते हैं, जिनमें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और पाचन तंत्र से जुड़ी मुश्किलें जैसे कि पेट दर्द, मितली और उल्टी हैं। WHO का मानना है कि बहुत नजदीकी संपर्क होने की स्थिति में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी संक्रमण हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि इसराइल और लेबनान के बीच 17 अप्रैल को घोषित युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में मानवीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। युद्ध विराम लागू होने के बावजूद 17 अप्रैल के बाद से 380 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यूएन प्रवक्ता ने संयुक्त राष्ट्र की ओर से सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पूर्ण सम्मान करने की अपील दोहराई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
3: लेबनान में नाजुक युद्ध विराम लागू रहने के बावजूद लोगों की हत्याओं व विस्थापन का सिलसिला रुका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता टीमों ने बताया है कि दक्षिण इलाके में इसराइली हमलों के कारण गांव के गांव इतनी बुरी तरह तबाह हो गए हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। लबनानी अधिकारियों के अनुसार 2 मार्च में लबनान में स्थित हिजबुल्ला लड़ाकों और इसराइली बल के बीच लड़ाई के बाद 2700 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के आकलन बताते हैं कि आने वाले महीनों में अतिरिक्त लगभग 1.5 लाख महिलाओं और लड़कियों को संकट स्तर की भूख या उससे भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ये कुल संख्या लगभग 6.5 लाख से अधिक हो जाएगी।
2: भू राजनैतिक उथल पुथल के बीच तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से जुड़े उस मुद्दे पर ध्यान बढ़ रहा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह मुद्दा है प्लास्टिक का उत्पादन, जो जीवाश्म ईंधनों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। दुनिया की प्लास्टिक अर्थव्यवस्था केवल कचरे से जुड़ा मुद्दा नहीं है, यह जलवायु से जुड़ा मुद्दा भी है, जिससे न केवल पृथ्वी की जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंचता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की समस्या भी और गहरी होती है। प्लास्टिक की व्यापक जरूरत जीवाश्म ईंधनों की मांग को बनाए रख सकती है, लेकिन तेल की ऊंची कीमत बदलाव को तेज करने वाला एक छिपा हुआ कारण भी बन सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
4: अधिकांश पारंपरिक प्लास्टिक तेल और गैस से जुड़े कच्चे माल से बनाए जाते हैं। हाल में मध्य पूर्व में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से इस कच्चे माल की लागत बढ़ गई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक बनाना भी महंगा हो गया है। ये मुद्दा केवल कीमतों का नहीं है, प्लास्टिक का उत्पादन जीवाश्म ईंधनों से जुड़ा है, इसलिए ये जलवायु परिवर्तन से भी गहराई से जुड़ा मुद्दा है। प्लास्टिक बनाने, ढोने और निपटाने की पूरी प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तेल की ऊंची कीमतें इस बदलाव को तेज कर सकती हैं। जब नया प्लास्टिक महंगा होता है तो कंपनियों के लिए जरूरत से ज्यादा पैकेजिंग करना कम फायदेमंद हो जाता है। एक बार इस्तेमाल होने वाले डब्बे, बोतलें और थैले भी पहले जितने सस्ते विकल्प नहीं रह जाते। ऐसे में पुनः उपयोग, रिफिल व्यवस्था, रिसाइकलिंग और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा मिल सकता है।
2: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने कहा है कि विदेश में रहने वाले 3,40,00,000 से अधिक भारतीय प्रवासी केवल एक संख्या भर नहीं है, बल्कि वे भारत और अपने मेजबान देशों दोनों में परिवर्तन, नवाचार और विकास

0: हाँ, तो किन मंचों पर किसी प्रवासी को अगर कोई रोजगार या आय वाले कामकाज का वादा किया गया है तो क्या वो वास्तव में मौजूद है? क्या रोजगार दस्तावेज या संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान किया जाएगा यानी उस पर कानूनी रूप से अमल किया जाएगा? अगर कुछ गलत होता है तो क्या कहीं से मदद मिलेगी? ये कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं और भारत का ई माइग्रेट डिजिटल प्लेटफॉर्म इनमें से कुछ सवालों के जवाब मुहैया कराने की कोशिश करता है।
1: भारत के विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धान सिंह ने इस कार्यक्रम में कहा कि ग्लोबल मोबिलिटी यानी दुनिया भर में लोगों का सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन सुनिश्चित करना सभी देशों की एक साझा जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने कहा कि देश की सरकार प्रवासन के लिए कानूनी और नियमित मार्गों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अपने उन नागरिकों की मदद करने के लिए भी जो विदेशों में अवसरों की तलाश करते हैं।
2: हॉलीवुड के अभिनेता और मानवतावादी रिचर्ड गेयर ने कहा है कि आवाज सभी अन्य अधिकारों का प्रवेश द्वार है। आश्रयहीनता के मुद्दे पर विचार करने के लिए विश्व शहरी मंच का 13वां सत्र 17 से 22 मई तक अजरबैजान की राजधानी बाकू शहर में होने वाला है, जिसका विषय है आवास की व्यवस्था, सुरक्षित और सहनशील शहर का समुदाय। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार 14 मई को अपनी वेबसाइट पॉन्टिफेक्स पर 4 ट्वीट संदेश प्रकाशित कर विश्व को परमाणु हथियार, युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरों के प्रति सचेत कराया। ये ट्वीट उसी संदेश के अंश हैं जिसे संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार 14 मई को रोम के ला सपियंसा विश्वविद्यालय में प्रसारित किया था। अपने पहले ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, हम कैसी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश यह दुनिया युद्ध और युद्ध जैसी भाषा से बिगड़ी हुई है। तर्कणा का यह प्रदूषण भू राजनैतिक दायरे से आता है और हर सामाजिक रिश्ते पर कब्जा कर लेता है। ऐसा कोई भी आसान तरीका जिससे वैमनस्यता उत्पन्न हो, उसे विचारों की जटिलता और स्मृति के समझदार और विवेकी अभ्यास के द्वारा ठीक करना होगा, विशेषकर विद्यालयों में। और अपने दूसरे ट्वीट में संत पापा लिखते हैं, विगत वर्ष संपूर्ण विश्व और यूरोप में सैन्य खर्चे में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पुनः हथियार बंद होने से तनाव और असुरक्षा बढ़ती है। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश कम होता है। कूटनीति में भरोसा कम हो जाता है और धनी लोग और अधिक धनवान बन जाते हैं, जिन्हें आम लोगों की भलाई की कोई परवाह नहीं होती। इसे डिफेंस अथवा निवारक या रक्षा का नाम

दिया जा सकता। तीसरे संदेश में संत पापा लिखते हैं, हमें सैन्य और नागर दोनों मामलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग को लेकर सावधान रहना चाहिए, ताकि यह नीति निर्माण और निर्णय लेने में मानवीय जिम्मेदारी को खत्म न कर दे या लड़ाई की दुखद घटना को और अधिक न बढ़ा दे। यूक्रेन, गाजा और फिलिस्तीनी इलाकों, लेबनान और ईरान की घटनाएं युद्ध और नई टेक्नोलॉजी के बीच रिश्ते के अमानवीय विकास को दिखाती हैं। और अपने अंतिम प्रकाशित ट्वीट में संत पापा ने लिखा, अध्ययन, अनुसंधान और निवेश को उल्टी दिशा में जाना चाहिए और जीवन के लिए एक वृहद हाँ बनना चाहिए। निर्दोष जीवन के लिए हाँ, युवा जिंदगी के लिए हाँ, उन लोगों की जिंदगी के लिए हाँ जो शांति और न्याय की मांग करते हैं। इसी बीच इटली के ट्यूरिन शहर में इस सप्ताह 14 से 18 मई तक जारी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले को एक तार संदेश प्रेषित कर संत पापा लियो 14वें ने इस तथ्य की पुनरावृत्ति की कि साहित्य को मानव सम्मान, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। संत पापा ने कहा कि इस समय विश्व को ऐसे साहित्य की जरूरत है जो हर व्यक्ति की गरिमा को पहचानने में मदद करे, विशेषकर सबसे कमजोर व्यक्ति की, और साथ ही ऐसे साहित्य की जो द्रुत गति से भाईचारे और शांति की पाठशाला बन जाए। वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने संत पापा लियो 14वें की ओर से उक्त संदेश ट्यूरिन के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल रोबर्टो रेपोलो को भेजकर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लेने वालों का अभिवादन किया और उनके प्रति शुभकामनाएं अर्पित की। यह संदेश गुरुवार सुबह मेले के उद्घाटन के अवसर पर मेले के निर्देशक द्वारा प्रतिभागियों के समक्ष पढ़ा गया। लेखिका एल्सा मोरांते की पुस्तक से लिए इस वर्ष के पुस्तक मेले के शीर्षक द वर्ल्ड सेव्ड बाय किड्स को संत पापा लियो ने महत्वपूर्ण और समय के हिसाब से सही निरूपित किया। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि ऐसे समय में जब युद्ध की भयावहता और बेपरवाही एवं उदासीनता की ठंड से घुटन महसूस हो रही है, बच्चे दुनिया को नई नजर से देखने की अपनी जन्मजात क्षमता से समाज में आशा की रोशनी को प्रज्वलित करते हैं। संदेश के अंत में संत पापा ने उम्मीद जताई कि यह पुस्तक मेला संवाद और सौहार्द को बढ़ावा देने में संस्कृति के महत्व के बारे में नई जागरूकता उत्पन्न करेगा। भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने संघर्ष प्रभावित उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में 3 आदिवासी ईसाई नेताओं की बेरहमी से हत्या की कड़ी निंदा की है, जहां नित्य बढ़ते बंधक संकट ने तनाव को और गहरा कर दिया है। बुधवार 13 मई को भारतीय कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन ने एक वक्तव्य प्रकाशित कर इन हत्याओं की निंदा करते हुए कहा, हम धार्मिक नेताओं के खिलाफ किए गए इस घृणित कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं, जो सामाजिक अशांति के इस मुश्किल समय में आशा और शक्ति का एक अहम जरिया बने हुए हैं। धर्माध्यक्षों ने कहा कि वे 13 मई को एक हमले में थादो बैप्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, कुकी लोगों में सबसे वरिष्ठ पादरी वोमथांग सितलो और एक पादरी सहित कुकी चर्च के 2 वरिष्ठ धार्मिक नेताओं की हत्या से बहुत दुखी हैं। बंदूकधारियों ने पादरियों पर तब हमला किया जब वे चुरा चांदपुर जिले में एक धार्मिक सभा में शामिल होने के बाद कांग पोखपी शहर लौट रहे थे। इस हमले में 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। मणिपुर में लड़ रहे समूहों के बीच शांति की अपील करते हुए धर्माध्यक्षों ने कहा, हिंसा सिर्फ जख्मों को और गहरा करती, दुख को बढ़ाती और हमारे समुदायों को जोड़ने वाले रिश्तों को कमजोर करती है। म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर में मई 2023 से मुख्य रूप से आदिवासी ईसाई कुकी समुदायों और मुख्य रूप से हिंदू मेतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा फैली हुई है। इस हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए हैं, सैकड़ों घायल हो गए हैं और 60,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। रोम धर्म प्रांत और रोम स्थित संत इजिदियो लोक धर्मी समुदाय के तत्वाधान में गाजा से आए फिलिस्तीनी छात्रों का एक समूह इस समय रोम के ला सपियंसा विश्वविद्यालय में युद्ध के बाद फिर से अपने भविष्य की शुरुआत कर पा रहा है। इन छात्रों ने 14 मई को संत पापा लियो 14वें से मुलाकात की और अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए। नादा जौदा और सलेम अबू मुस्तफा उन 4 लोगों में से हैं जिन्हें रोम के ला सपियंसा विश्वविद्यालय में दाखिला मिला है। उनका साहसिक कार्य जोरदार तरीके से शुरू हुआ क्योंकि 14 मई को
संत पापा लियो 14वें ने ला सपियंसा का दौरा कर विश्वविद्यालयीन समुदाय को अपना संदेश दिया था। नादा और सालेम ने हमारे संवाददाताओं से कहा कि संत पापा से मुलाकात करना और उनका स्वागत करना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। संत पापा ने अपने संदेश में गाजा पट्टी से आए छात्रों के लिए मानवतावादी गलियारों को खोलने हेतु ला सपियंसा विश्वविद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने अकादमिक समुदाय से आग्रह किया कि वे विश्वविद्यालय को मेल मिलाप, बातचीत और शांति निर्माण की जगह बनाएं। उन्होंने गाजा के छात्रों को शरण देने और उनके अध्ययन अध्यापन में निवेश करने के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी के छात्रों की मौजूदगी अध्ययन और अनुसंधान में निवेश करने की जरूरत का एक दिल को छू लेने वाला सबूत थी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, अटलांटिक महासागर से गुजर रहे यात्री जहाज में हंटा वायरस संक्रमण के प्रकोप ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हंटा वायरस प्रकोप से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम कम है और यह कोविड जैसी किसी नई महामारी की शुरुआत नहीं है। हंटा वायरस संक्रमण के चपेट में आए क्रूज जहाज MV होंटियस से सभी यात्रियों और नाविक दल के सदस्यों को स्पेन के द्वीप टेनेरीफ में सुरक्षित उतारने का कार्य पूरा हो गया है और अनेक यात्री अपने देश पहुंच चुके हैं। यात्रियों को उनके देश रवाना किए जाने के प्रयासों को UN स्वास्थ्य एजेंसी के सहयोग से स्पेनी प्रशासन, रोग रोकथाम व नियंत्रण के लिए यूरोपीय संघ और अनेक देशों की सरकारों ने साथ मिलकर पूरा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि इस जहाज पर अब तक 11 संक्रमण मामले सामने आए, जिसमें से 9 की प्रयोगशाला में पुष्टि हो गई और 3 यात्रियों की मौत हुई। 2 अन्य मामलों में अभी परीक्षण के बाद कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकल पाया है और इसकी जांच की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस आपात राहत टीम के साथ टेनेरीफ में पहुंचे और उन्होंने स्पेनी सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि योजना के अनुरूप यात्रियों को सुरक्षित उतारने का कार्य संपन्न हुआ है। डॉक्टर टेड्रोस ने स्पेन, यूरोपीय साझीदारों, टेनेरीफ के स्थायी प्रशासन और नाविक दल के सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह एकजुटता की विजय है। यात्रियों का अंतिम समूह कैनेरी आइसलैंड से विशेष उड़ानों के जरिए अपने देशों के लिए रवाना हो गया। नाविक दल के 30 से अधिक सदस्य और 2 स्वास्थ्य कर्मी अभी जहाज पर ही मौजूद हैं और यह क्रूज अब नीदरलैंड के रोटरडैम में स्थित अपने मूल बंदरगाह की ओर रवाना हुआ है। हंटा वायरस संक्रमण चीजों को कुतरने वाले जानवरों जैसे संक्रमित छोटे या बड़े चूहों के मल मूत्र या थूक के संपर्क में आने की वजह से फैलता है। किसी संक्रमित के संपर्क में आने के बाद मनुष्यों में इसके लक्षण 1 से 6 सप्ताह के भीतर दिखाई देते हैं, जिनमें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और पाचन तंत्र से जुड़ी मुश्किलें जैसे कि पेट दर्द, मितली और उल्टी हैं। WHO का मानना है कि बहुत नजदीकी संपर्क होने की स्थिति में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी संक्रमण हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि इसराइल और लेबनान के बीच 17 अप्रैल को घोषित युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में मानवीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। युद्ध विराम लागू होने के बावजूद 17 अप्रैल के बाद से 380 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। UN प्रवक्ता ने संयुक्त राष्ट्र की ओर से सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पूर्ण सम्मान करने की अपील दोहराई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
3: लेबनान में नाजुक युद्ध विराम लागू रहने के बावजूद लोगों की हत्याओं व विस्थापन का सिलसिला रुका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता टीमों ने बताया है कि दक्षिण इलाके में इसराइली हमलों के कारण गांव के गांव इतनी बुरी तरह तबाह हो गए हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। लबनानी अधिकारियों के अनुसार 2 मार्च में लबनान में स्थित हिजबुल्ला लड़ाकों और इसराइली बल के बीच लड़ाई के बाद 2700 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के आकलन बताते हैं कि आने वाले महीनों में अतिरिक्त लगभग 1.5 लाख महिलाओं और लड़कियों को संकट स्तर की भूख या उससे भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ये कुल संख्या लगभग 6.5 लाख से अधिक हो जाएगी।
2: भू राजनैतिक उथल पुथल के बीच तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से जुड़े उस मुद्दे पर ध्यान बढ़ रहा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह मुद्दा है प्लास्टिक का उत्पादन, जो जीवाश्म ईंधनों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। दुनिया की प्लास्टिक अर्थव्यवस्था केवल कचरे से जुड़ा मुद्दा नहीं है, यह जलवायु से जुड़ा मुद्दा भी है, जिससे न केवल पृथ्वी की जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंचता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की समस्या भी और गहरी होती है। प्लास्टिक की व्यापक जरूरत जीवाश्म ईंधनों की मांग को बनाए रख सकती है, लेकिन तेल की ऊंची कीमत बदलाव को तेज करने वाला एक छिपा हुआ कारण भी बन सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
4: अधिकांश पारंपरिक प्लास्टिक तेल और गैस से जुड़े कच्चे माल से बनाए जाते हैं। हाल में मध्य पूर्व में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से इस कच्चे माल की लागत बढ़ गई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक बनाना भी महंगा हो गया है। ये मुद्दा केवल कीमतों का नहीं है, प्लास्टिक का उत्पादन जीवाश्म ईंधनों से जुड़ा है, इसलिए ये जलवायु परिवर्तन से भी गहराई से जुड़ा मुद्दा है। प्लास्टिक बनाने, ढोने और निपटाने की पूरी प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तेल की ऊंची कीमतें इस बदलाव को तेज कर सकती हैं। जब नया प्लास्टिक महंगा होता है तो कंपनियों के लिए जरूरत से ज्यादा पैकेजिंग करना कम फायदेमंद हो जाता है। एक बार इस्तेमाल होने वाले डब्बे, बोतलें और थैले भी पहले जितने सस्ते विकल्प नहीं रह जाते। ऐसे में पुनः उपयोग, रिफिल व्यवस्था, रिसाइकलिंग और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा मिल सकता है।
2: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने कहा है कि विदेश में रहने वाले 3,40,00,000 से अधिक भारतीय प्रवासी केवल एक संख्या भर नहीं है, बल्कि वे भारत और अपने मेजबान देशों दोनों में परिवर्तन, नवाचार और विकास के दूत हैं। IOM ने भारत के स्थायी मिशन द्वारा UN मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय प्रवासियों की कहानी वास्तव में मानव गतिशीलता की शक्ति का एक प्रमाण है। इस पर विस्तृत जानकारी आइए सुनते हैं महबूब खान और पूजा यादव से।
5: IOM के रणनीतिक व बाहरी संपर्क मामलों के उप निदेशक किम एलिंग ने भारत के स्थायी मिशन द्वारा UN मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि बहुत से प्रवासियों के लिए तत्काल महत्व के मुद्दे ये हैं कि क्या उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिल सकती है, अगर हाँ तो किन मंचों पर, किसी प्रवासी को अगर कोई रोजगार या आय वाले कामकाज का वादा किया गया है तो क्या वो वास्तव में मौजूद है, क्या रोजगार दस्तावेज या संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान किया जाएगा यानी उस पर कानूनी रूप से अमल किया जाएगा, अगर कुछ गलत होता है तो क्या कहीं से मदद मिलेगी। ये कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं और भारत का ई माइग्रेट डिजिटल प्लेटफॉर्म इनमें से कुछ सवालों के जवाब मुहैया कराने की कोशिश करता है।
3: भारत के विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धान सिंह ने इस कार्यक्रम में कहा कि ग्लोबल मोबिलिटी यानी दुनिया भर में लोगों का सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन सुनिश्चित करना सभी देशों की एक साझा जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने कहा कि देश की सरकार प्रवासन के लिए कानूनी और नियमित मार्गों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अपने उन नागरिकों की मदद करने के लिए भी जो विदेशों में अवसरों की तलाश करते हैं।
2: हॉलीवुड के अभिनेता और मानवतावादी रिचर्ड गेयर ने कहा है कि आवाज सभी अन्य अधिकारों का प्रवेश द्वार है। आश्रयहीनता के मुद्दे पर विचार करने के लिए विश्व शहरी मंच का 13वां सत्र 17 से 22 मई तक अजरबैजान की राजधानी बाकू शहर में होने वाला है, जिसका विषय है आवास की व्यवस्था, सुरक्षित और सहनशील शहर का समुदाय। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार 14 मई को अपनी वेबसाइट पॉन्टिफेक्स पर 4 ट्वीट संदेश प्रकाशित कर विश्व को परमाणु हथियार, युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरों के प्रति सचेत कराया। ये ट्वीट उसी संदेश के अंश हैं जिसे संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार 14 मई को रोम के ला सपियंसा विश्वविद्यालय में प्रसारित किया था। अपने पहले ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, हम कैसी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश यह दुनिया युद्ध और युद्ध जैसी भाषा से बिगड़ी हुई है। तर्कणा का यह प्रदूषण भू राजनीतिक दायरे से आता है और हर सामाजिक रिश्ते पर कब्जा कर लेता है। ऐसा कोई भी आसान तरीका जिससे वैमनस्यता उत्पन्न हो, उसे विचारों की जटिलता और स्मृति के समझदार और विवेकी अभ्यास के द्वारा ठीक करना होगा, विशेषकर विद्यालयों में। और अपने दूसरे ट्वीट में संत पापा लिखते हैं, विगत वर्ष संपूर्ण विश्व और यूरोप में सैन्य खर्चे में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पुनः हथियार बंद होने से तनाव और असुरक्षा बढ़ती है। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश कम होता है, कूटनीति में भरोसा कम हो जाता है और धनी लोग और अधिक धनवान बन जाते हैं जिन्हें आम लोगों की भलाई की कोई परवाह नहीं होती। इसे डिफेंस अथवा निवारक या रक्षा का नाम नहीं दिया जा सकता। तीसरे संदेश में संत पापा लिखते हैं, हमें सैन्य और नागर दोनों मामलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग को लेकर सावधान रहना चाहिए ताकि यह नीति निर्माण और निर्णय लेने में मानवीय जिम्मेदारी को खत्म न कर दे या लड़ाई की दुखद घटना को और अधिक न बढ़ा दे। यूक्रेन, गाजा और फिलिस्तीनी इलाकों, लेबनान और ईरान की घटनाएं युद्ध और नई टेक्नोलॉजी के बीच रिश्ते के अमानवीय विकास को दिखाती हैं। और अपने अंतिम प्रकाशित ट्वीट में संत पापा ने लिखा, अध्ययन, अनुसंधान और निवेश को उल्टी दिशा में जाना चाहिए और जीवन के लिए एक वृहद हाँ बनना चाहिए। निर्दोष जीवन के लिए हाँ, युवा जिंदगी के लिए हाँ, उन लोगों की जिंदगी के लिए हाँ जो शांति और न्याय की मांग करते हैं। इसी बीच इटली के ट्यूरिन शहर में इस सप्ताह 14 से 18 मई तक जारी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले को एक तार संदेश प्रेषित कर संत पापा लियो 14वें ने इस तथ्य की पुनरावृत्ति की कि साहित्य को मानव सम्मान, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। संत पापा ने कहा कि इस समय विश्व को ऐसे साहित्य की जरूरत है जो हर व्यक्ति की गरिमा को पहचानने में मदद करे, विशेषकर सबसे कमजोर व्यक्ति की, और साथ ही ऐसे साहित्य की जो द्रुत गति से भाईचारे और शांति की पाठशाला बन जाए। वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने संत पापा लियो 14वें की ओर से उक्त संदेश ट्यूरिन के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल रोबर्टो रेपोलो को भेजकर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लेने वालों का अभिवादन किया और उनके प्रति शुभकामनाएं अर्पित की। यह संदेश गुरुवार सुबह मेले के उद्घाटन के अवसर पर मेले के निर्देशक द्वारा प्रतिभागियों के समक्ष पढ़ा गया। लेखिका एल्सा मोरांते की पुस्तक से लिए इस वर्ष के पुस्तक मेले के शीर्षक द वर्ल्ड सेव्ड बाय किड्स को संत पापा लियो ने महत्वपूर्ण और समय के हिसाब से सही निरूपित किया। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि ऐसे समय में जब युद्ध की भयावहता और बेपरवाही एवं उदासीनता की ठंड से घुटन महसूस हो रही है, बच्चे दुनिया को नई नजर से देखने की अपनी जन्मजात क्षमता से समाज में आशा की रोशनी को प्रज्वलित करते हैं। संदेश के अंत में संत पापा ने उम्मीद जताई कि यह पुस्तक मेला संवाद और सौहार्द को बढ़ावा देने में संस्कृति के महत्व के बारे में नई जागरूकता उत्पन्न करेगा। भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने संघर्ष प्रभावित उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में 3 आदिवासी ईसाई नेताओं की बेरहमी से हत्या की कड़ी निंदा की है, जहां नित्य बढ़ते बंधक संकट ने तनाव को और गहरा कर दिया है। बुधवार 13 मई को भारतीय कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन ने एक वक्तव्य प्रकाशित कर इन हत्याओं की निंदा करते हुए कहा, हम धार्मिक नेताओं के खिलाफ किए गए इस घृणित कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं जो सामाजिक अशांति के इस मुश्किल समय में आशा और शक्ति का एक अहम जरिया बने हुए हैं।
धर्माध्यक्षों ने कहा कि वे 13 मई को एक हमले में थादो बैप्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, कुकी लोगों में सबसे वरिष्ठ पादरी वोमथांग सितलो और एक पादरी सहित कुकी चर्च के 2 वरिष्ठ धार्मिक नेताओं की हत्या से बहुत दुखी हैं। बंदूकधारियों ने पादरियों पर तब हमला किया जब वे चुराचांदपुर जिले में एक धार्मिक सभा में शामिल होने के बाद कांग पोखपी शहर लौट रहे थे। इस हमले में 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। मणिपुर में लड़ रहे समूहों के बीच शांति की अपील करते हुए धर्माधीक्षों ने कहा, हिंसा सिर्फ जख्मों को और गहरा करती, दुख को बढ़ाती और हमारे समुदायों को जोड़ने वाले रिश्तों को कमजोर करती है। म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर में मई 2023 से मुख्य रूप से आदिवासी ईसाई कुकी समुदायों और मुख्य रूप से हिंदू मेतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा फैली हुई है। इस हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए हैं, सैकड़ों घायल हो गए हैं और 60,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। रोम धर्म प्रांत और रोम स्थित संत इजिडियो लोक धर्मी समुदाय के तत्वाधान में गाजा से आए फिलिस्तीनी छात्रों का एक समूह इस समय रोम के ला सपियेंसा विश्वविद्यालय में युद्ध के बाद फिर से अपने भविष्य की शुरुआत कर पा रहा है। इन छात्रों ने 14 मई को संत पापा लियो 14वें से मुलाकात की और अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए। नादा जौदा और सलेम अबू मुस्तफा उन 4 लोगों में से हैं जिन्हें रोम के ला सपियेंसा विश्वविद्यालय में दाखिला मिला है। उनका साहसिक कार्य जोरदार तरीके से शुरू हुआ क्योंकि 14 मई को संत पापा लियो 14वें ने ला सपियेंसा का दौरा कर विश्वविद्यालयीन समुदाय को अपना संदेश दिया था। नादा और सालेम ने हमारे संवाददाताओं से कहा कि संत पापा से मुलाकात करना और उनका स्वागत करना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। संत पापा ने अपने संदेश में गाजा पट्टी से आए छात्रों के लिए मानवतावादी गलियारों को खोलने हेतु ला सपियेंसा विश्वविद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने अकादमिक समुदाय से आग्रह किया कि वे विश्वविद्यालय को मेल मिलाप, बातचीत और शांति निर्माण की जगह बनाएं। उन्होंने गाजा के छात्रों को शरण देने और उनके अध्ययन अध्यापन में निवेश करने के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी के छात्रों की मौजूदगी अध्ययन और अनुसंधान में निवेश करने की जरूरत का एक दिल को छू लेने वाला सबूत थी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: से चिरदिन अवरुद्ध होकर न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और

नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, अपनों के संग रहने की चाहत हर मानव हृदय की एक गहरी तमन्ना है। हम सदैव अपनों के संग रहने की चाह रखते हैं। हम उनके निकट और करीब रहने की दिलो तमन्ना रखते हैं जिन्हें हम सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। इस भांति हमारा अपनों के पास उनके संग रहना एक तरह से अपने में पूर्णता की अनुभूति लाती है, जहां हम अपने को किसी भी प्रकार के डर, भय या संकोच से मुक्त पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अपनों के संग रहना हमें इस बात की निश्चितता और विश्वास दिलाती है कि कुछ अनहोनी के होने पर भी हम अपने प्रिय जनों के द्वारा देख रेख किए जाएंगे। वे हमारी सुध लेंगे और हमारी सेवा शुश्रूषा करेंगे। श्रोताओं, आज माता कलिसिया प्रभु येसु ख्रीस्त के स्वर्गारोहण का महोत्सव मनाती है। इस महापर्व हेतु निर्धारित आराधना विधि चिंतन पाठ हमें अपने जीवन में इस सच्चाई को देखने, पहचानने और उनमें बने रहने का निमंत्रण देता है कि पुनर्जीवित येसु सदैव हमारे जीवन में हमारे संग रहते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा की। क्या हम अपने उस पुनर्जीवित मुक्तिदाता येसु ख्रिस्त का अपने संग होने का एहसास करते हैं? उनकी उपस्थिति की निशानी हमारे लिए क्या होती है? हम उन्हें कैसे अपने दैनिक जीवन की घटनाओं में देखते पाते और उनके संग अपने संबंध की घनिष्ठता में प्रवेश करते हैं?
1: तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां येसु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने येसु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब येसु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें सचमुच में जीवित प्रभु येसु ख्रिस्त की उपस्थिति को देखने में, उन्हें अपने दैनिक जीवन के कार्यों में पहचानने को मदद करें, जिससे हम उनके द्वारा दिए गए अपने कार्यों को उनकी महिमा और स्तुति हेतु कर सकें। श्रोताओं, प्रेरित चरित का प्रथम अध्याय हमारे लिए एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थियोफिलुस की चर्चा करता है, जिन्हें येसु के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लिखा जाता है, जिसे उन्होंने इस पृथ्वी पर रहते वक्त स्वर्ग में आरोहित किए जाने तक विभिन्न रूपों में पूरा किया। उन्हें इस बात का साक्ष्य दिया जाता है कि येसु ने अपने शिष्यों को, जिन्हें उन्होंने चुना, अपने कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। इतना ही नहीं, येसु अपने शिष्यों को यरूशलेम में रुककर पिता ईश्वर द्वारा भेजे जाने वाले सत्य के आत्मा की प्रतीक्षा करने का निर्देश देते हैं, जिससे वे उस आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करें। श्रोताओं, यह हमारे लिए इस बात का साक्ष्य देता है कि येसु ने पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता के कार्यों को पूरा किया, जिसके लिए वे पिता की ओर से भेजे गए थे। अपने पुनरुत्थान के उपरांत अपने शिष्यों को कई बार दिखाई दिए और उनके संग रहते हुए उन्हें स्वयं अपनी आत्मा से पोषित कर अपने कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। येसु ने जिस भांति अपने पिता के कार्यों को पूरा किया, वे शिष्यों को और हमें भी अपने कार्यों में पिता की इच्छा पूरा करने को भेजते हैं। श्रोताओं, इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें अपने जीवन के सार और दुनिया में अपने भेजे जाने के रहस्य को समझने में मदद करता है। संत पौलुस हमें प्रज्ञा और आध्यात्मिक दृष्टि में अपने बुलाए जाने के कारण को मन की आंखों से देखने का आह्वान करते हैं। मृतकों में पुनर्जीवित येसु, जो स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है, हम अपनी आशा में संतों के संग उसी विरासत के अधिकारी होने को बुलाए गए हैं, जो हमें उन कार्यों के निष्पादन हेतु आह्वान करता है जिसे स्वयं येसु ख्रिस्त ने पृथ्वी के जीवन में पूरा किया। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसका श्रवण हमने किया, हमारे लिए प्रथम और द्वितीय पाठ को संयुक्त रूप में समझने को मदद करता है। यीशु ख्रिस्त स्वर्ग और पृथ्वी पर मिले अपने अधिकार के कारण हमें राष्ट्रों में ज्योति की भांति भेजते हैं। इस भेजे जाने में हम स्वयं यीशु के भेजे जाने को देखते हैं, जो सारी मानव जाति की मुक्ति हेतु हमारे लिए उनकी प्रेरिताई को व्यक्त करता है। अपनी प्रेरिताई में यीशु अपने दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा सारी मानवता को पाप और मृत्यु से बचाया और नया जीवन प्रदान किया। यह नया जीवन हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा द्वारा प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप हम त्रित्व में ईश्वर की संतान बनते और उस अनंत जीवन के भागीदार होते हैं, जिसे यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए पुनरुत्थान में प्रदान किया है। अतः हमें जो जीवनदायी उपहार, प्रेम का उपहार यीशु ख्रिस्त की शिक्षा में मिली है, हमें उसी शिक्षा को दूसरों के संग साझा करने को भेजा जाता है। शिष्यों के भेजे जाने में यीशु उन्हें कहते हैं, मैंने जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखाओ। श्रोताओ, यहाँ हम कलीसिया के एक विशेष गुण को देखते हैं, अर्थात कलीसिया जो ख्रिस्त का अनुसरण करती है अपने में दूसरों के बीच जाने को कही जाती है, वह अपने से बाहर जाने को आमंत्रित की जाती है, जिससे वह दूसरों के लिए जीवन का कारण बने। अतः ख्रिस्त विश्वासियों के रूप में हम ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए बांटे जाने को कहते हैं। हम इसे यीशु के वचनों को घोषित करते हुए और अपने कार्यों के माध्यम साक्ष्य देते हुए पूरा करते हैं। ईश्वर ने हमें मुक्ति प्रदान की है और हम उसी मुक्ति को अपने में सीमित रखने को नहीं कहे जाते, बल्कि उसे उनके संग साझा करने को भेजे जाते हैं जिन्हें ईश्वरीय प्रेम की जरूरत है। श्रोताओं, हम अपने इस कार्य में सदैव इस बात को याद रखें कि यह हमारा कार्य नहीं है, बल्कि यह उस ईश्वर का कार्य है जिन्होंने हमें जीवन दिया है। और इसलिए यीशु हमें कहते हैं कि याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हमारे दैनिक जीवन के कार्य, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों, यदि हम उन्हें इस मनोभाव से करते हैं कि यह हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया कार्य है, जिसे हम अपने लिए नहीं वरन उसकी स्तुति और महिमा के लिए करते हैं, तो हम त्रित्वमय ईश्वर को अपने जीवन, वचन और कर्म में वहन करते हैं। आइए हम त्रित्वमय ईश्वर से निवेदन करें कि वे हमें अपने जीवन में इस रहस्य को समझने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम उनकी निकटता का अनुभव सदैव करते हुए उनकी महिमा के लिए अपने कार्यों को पूरा कर सकें।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है समाचार। उत्तरी इटली के जेनेवा महाधर्म प्रांत के करीब 1,000 कैथोलिक युवा रोम की तीर्थ यात्रा पर हैं और आज वाटिकन के संत दमासो प्रांगण में संत पापा लियो 14वें ने उनसे मुलाकात की और मसीह के पीछे चलने की उनकी इच्छा को बढ़ावा दिया। ये युवा दृढ़करण संस्कार लेने की तैयारी कर रहे हैं जो दीक्षा के संस्कारों को पूरा करता है और बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति को पवित्र आत्मा के उपहार से सील करता है। संत पापा लियो ने कहा, हर धर्माध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी खुशियों में से एक दृढ़करण संस्कार देने का मौका है क्योंकि यह सच में पवित्र आत्मा का उपहार है। उन्होंने कहा, यह संस्कार लेना बहुत सुंदर है क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरता हमें उत्साह, ताकत और यीशु मसीह के पीछे चलने, हमेशा प्रभु को हाँ कहने और ऐसी दुनिया में विश्वास के साथ जीने की क्षमता देती है जो अक्सर हमें प्रभु से दूर ले जाना चाहती है। उन्होंने बताया कि अगला रविवार 24 मई पेंतेकोस्त रविवार है, जब कलीसिया पहले शिष्यों के अनुभव को याद करती है जिन्हें पवित्र आत्मा मिली और उन्होंने परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करना शुरू किया। संत पापा ने कहा कि हम अकेले विश्वास को नहीं जीते, हम इसे एक साथ जीते हैं और दोस्ती एवं समुदाय में ये रिश्ते बनाना यीशु के शिष्यों के तौर पर मजबूती से जीने का एक तरीका है। अंत में संत पापा ने युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे पवित्र आत्मा की पूरी कृपा पाने के इस पल का आनंद लें और इसे अपनी पूरी जिंदगी बनाए रखें। उन्होंने कहा, यह बहुत जरूरी है कि आप में से हर कोई प्रभु से यह वादा करे कि आप सच में उनके दोस्त, उनके शिष्य और उनके मिशनरी बने रहना चाहते हैं और आप विश्वास में मजबूती से बने रहना चाहते हैं। और आज संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में कई इटालियन बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों से मुलाकात की और उन्होंने समाज में बैंकों और जमा धन संस्थानों की भूमिका पर बातें की। उन्होंने कहा, आपके फाउंडेशन की भावना सभी को खासकर यह याद दिलाती है कि किसी बैंक में सबसे पहले पूंजी नहीं बल्कि लोग आते हैं और इन नंबरों के पीछे महिलाएं, पुरुष, परिवार होते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे माहौल में जब वित्तीय साधन का हाई लेवल कंप्यूटराइजेशन आपसी रिश्तों में मीडिएशन से ज्यादा मुश्किल और बनावटी तरीकों को लागू कर रहा है, आप इंसानी ध्यान की एक महान परंपरा के वारिस यह पक्का करने के लिए बुलाए गए हैं कि जो लोग आपकी सेवा लेते हैं वे एल्गोरिदम सिस्टम की ठंडक में अकेला महसूस न करें। उन्होंने कहा कि इन सिस्टम के पीछे आज भी पहले की तरह ऐसे लोग होने चाहिए जो सुनने के लिए तैयार हों और अच्छा करने के लिए तैयार हों। संत पापा ने कहा, पूंजी का एक जगह जमा होने से स्वार्थी जमाखोरी हो सकती है जो असमानता और गरीबी का कारण बन सकती है। संत पापा ने चेतावनी दी और बैंकिंग संस्थाओं से एकजुटता की नैतिकता और सुनने की इच्छा रखने की अपील की। और स्पेन के बाद संत पापा लियो 14वें की प्रेरितिक यात्रा एक बार फिर एक यूरोपीय देश फ्रांस में होगी। आज 16 मई को वाटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की कि देश के राष्ट्राध्यक्ष और कलीसिया के अधिकारियों एवं यूनेस्को के महानिदेशक के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए संत पापा लियो 14वें 25 से 28 सितंबर तक फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा करेंगे और उस संगठन के मुख्यालय का दौरा करेंगे। बयान में कहा गया कि यह संत पापा लियो की 5वीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इससे पहले वे तुर्की और लेबनान, मोनाको की रियासत और अफ्रीका की यात्रा कर चुके हैं। स्पेन की यात्रा 6 से 12 जून तक करेंगे और शुक्रवार 15 मई को संत पेत्रुस महागिरजाघर में संत पापा लियो 14वें ने कार्डिनल पॉल एमिल शेरिंग के अंतिम संस्कार की अध्यक्षता की, जिनकी 12 मई को 79 साल की उम्र में मौत हो गई। उन्होंने दिवंगत स्विस कार्डिनल के दशकों तक
परम धर्मपीठ के प्रति निष्ठावान सेवा के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें ईश्वर की दया पर छोड़ दिया। अपने प्रवचन में संत पापा ने उस महान और पवित्र पल पर विचार किया जिसमें कार्डिनल अब प्रभु के सामने इस जीवन में किए गए अच्छे कामों का इनाम और इंसानी कमजोरी से हुई कमियों के लिए माफी के लिए खड़े हैं। संत पापा लियो ने कार्डिनल शेरिंग को कलीसिया का एक समर्पित सेवक बताया जिन्होंने अपना आधा से ज्यादा जीवन परम धर्मपीठ की राजनयिक सेवा में बिताया। दुनिया भर में परम धर्मपीठ के प्रतिनिधि और वाटिकन राज्य सचिवालय में अपनी सेवा दी। संत पापा ने कहा कि हालांकि अक्सर लोगों की नजरों से दूर रहकर उन्होंने सेवा की, लेकिन उनकी सेवा ने ईश्वर के राज्य को बढ़ाने में बिना थके योगदान दिया है। संत पापा ने एक पुरोहित और एक राजनयिक दोनों के तौर पर स्वर्गीय कार्डिनल के काम की तारीफ की और बताया कि कैसे उन्होंने लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाने और स्थानीय कलीसियाओं एवं परम धर्म पीठ के बीच मेल जोल को मजबूत करने के लिए धैर्य और त्याग के साथ काम किया। उधर विश्व सामाजिक संचार दिवस को मनाने के लिए संचार विभाग ने गुरुवार 21 मई को परम धर्मपीठ उर्बान विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। विश्व दिवस का विषय इंसानी आवाजों और चेहरों को बचाना संत पापा लियो के संदेश को दिखाता है और उस भावना को दिखाता है जिसमें आयोजक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लोगों, समुदाय और देशों की जिंदगी पर इसके असर पर बातचीत करने के लिए अकादमी, संस्थानीय प्रतिनिधियों, हाईटेक एक्सपर्ट और पत्रकारों को बुलाया है। इसका उद्देश्य संत पापा की इस बात के जवाब में सोच विचार और बातचीत का एक पल होना है कि संचार के तोहफे को इंसानियत की सबसे गहरी सच्चाई के तौर पर संजो कर रखें। उधर यूक्रेन के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास 13 और 14 मई को यूक्रेन में रूस की खास तौर पर तेज बमबारी के बारे में बताया और मानवतावादी कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि उन पर जानबूझकर निशाना बनाया गया ताकि लोगों को मदद ना मिले। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, अपनों के संग रहने की चाहत हर मानव हृदय की एक गहरी तमन्ना है। हम सदैव अपनों के संग रहने की चाह रखते हैं। हम उनके निकट और करीब रहने की दिलो तमन्ना रखते हैं, जिन्हें हम सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। इस भांति हमारा अपनों के पास उनके संग रहना एक तरह से अपने में पूर्णता की अनुभूति लाती है, जहां हम अपने को किसी भी प्रकार के डर, भय या संकोच से मुक्त पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अपनों के संग रहना हमें इस बात की निश्चितता और विश्वास दिलाती है कि कुछ अनहोनी के होने पर भी हम अपने प्रिय जनों के द्वारा देख रेख किए जाएंगे। वे हमारी सुध लेंगे और हमारी सेवा शुश्रूषा करेंगे। श्रोताओं, आज माता कलिसिया प्रभु येसु ख्रीस्त के स्वर्गारोहण का महोत्सव मनाती है। इस महापर्व हेतु निर्धारित आराधना विधि चिंतन पाठ हमें अपने जीवन में इस सच्चाई को देखने, पहचानने और उनमें बने रहने का निमंत्रण देता है कि पुनर्जीवित येसु सदैव हमारे जीवन में हमारे संग रहते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा की। क्या हम अपने उस पुनर्जीवित मुक्तिदाता येसु ख्रिस्त का अपने संग होने का एहसास करते हैं? उनकी उपस्थिति की निशानी हमारे लिए क्या होती है? हम उन्हें कैसे अपने दैनिक जीवन की घटनाओं में देखते पाते और उनके संग अपने संबंध की घनिष्ठता में प्रवेश करते हैं?
1: तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहाँ येसु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने येसु को देख कर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब येसु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें सचमुच में जीवित प्रभु येसु ख्रिस्त की उपस्थिति को देखने में, उन्हें अपने दैनिक जीवन के कार्यों में पहचानने को मदद करें, जिससे हम उनके द्वारा दिए गए अपने कार्यों को उनकी महिमा और स्तुति हेतु कर सकें। श्रोताओं, प्रेरित चरित्र का प्रथम अध्याय हमारे लिए एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थियोफिलुस की चर्चा करता है, जिन्हें येसु के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लिखा जाता है, जिसे उन्होंने इस पृथ्वी पर रहते वक्त स्वर्ग में आरोहित किए जाने तक विभिन्न रूपों में पूरा किया। उन्हें इस बात का साक्ष्य दिया जाता है कि येसु ने अपने शिष्यों को, जिन्हें उन्होंने चुना, अपने कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। इतना ही नहीं, येसु अपने शिष्यों को यरूशलेम में रुककर पिता ईश्वर द्वारा भेजे जाने वाले सत्य के आत्मा की प्रतीक्षा करने का निर्देश देते हैं, जिससे वे उस आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करें। श्रोताओं, यह हमारे लिए इस बात का साक्ष्य देता है कि येसु ने पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता के कार्यों को पूरा किया, जिसके लिए वे पिता की ओर से भेजे गए थे। अपने पुनरुत्थान के उपरांत अपने शिष्यों को कई बार दिखाई दिए और उनके संग रहते हुए उन्हें स्वयं अपनी आत्मा से पोषित कर अपने कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। येसु ने जिस भांति अपने पिता के कार्यों को पूरा किया, वे शिष्यों को और हमें भी अपने कार्यों में पिता की इच्छा पूरा करने को भेजते हैं। श्रोताओं, इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें अपने जीवन के सार और दुनिया में अपने भेजे जाने के रहस्य को समझने में मदद करता है। संत पौलुस हमें प्रज्ञा और आध्यात्मिक दृष्टि में अपने बुलाए जाने के कारण को मन की आंखों से देखने का आह्वान करते हैं। मृतकों में पुनर्जीवित येसु, जो स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है, हम अपनी आशा में संतों के संग उसी विरासत के अधिकारी होने को बुलाए गए हैं, जो हमें उन कार्यों के निष्पादन हेतु आह्वान करता है, जिसे स्वयं येसु ख्रिस्त ने पृथ्वी के जीवन में पूरा किया। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसका श्रवण हमने किया हमारे लिए प्रथम और द्वितीय पाठ को संयुक्त रूप में समझने को मदद करता है। यीशु ख्रिस्त स्वर्ग और पृथ्वी पर मिले अपने अधिकार के कारण हमें राष्ट्रों में ज्योति की भांति भेजते हैं। इस भेजे जाने में हम स्वयं यीशु के भेजे जाने को देखते हैं जो सारी मानव जाति की मुक्ति हेतु हमारे लिए उनकी प्रेरिताई को व्यक्त करता है। अपनी प्रेरिताई में यीशु अपने दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा सारी मानवता को पाप और मृत्यु से बचाया और नया जीवन प्रदान किया। यह नया जीवन हमें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा द्वारा प्राप्त होता है जिसके फलस्वरूप हम त्रित्वमय ईश्वर की संतान बनते और उस अनंत जीवन के भागीदार होते हैं जिसे यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए पुनरुत्थान में प्रदान किया है। अतः हमें जो जीवनदायी उपहार प्रेम का उपहार यीशु ख्रिस्त की शिक्षा में मिली है हमें उसी शिक्षा को दूसरों के संग साझा करने को भेजा जाता है। शिष्यों के भेजे जाने में यीशु उन्हें कहते हैं, मैंने जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखाओ। श्रोताओ, यहाँ हम कलीसिया के एक विशेष गुण को देखते हैं अर्थात कलीसिया जो ख्रिस्त का अनुसरण करती है अपने में दूसरों के बीच जाने को कही जाती है। वह अपने से बाहर जाने को आमंत्रित की जाती है जिससे वह दूसरों के लिए जीवन का कारण बने। अतः ख्रिस्त विश्वासियों के रूप में हम ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए बांटे जाने को कहते हैं। हम इसे यीशु के वचनों को घोषित करते हुए और अपने कार्यों के माध्यम साक्ष्य देते हुए पूरा करते हैं। ईश्वर ने हमें मुक्ति प्रदान की है और हम उसी मुक्ति को अपने में सीमित रखने को नहीं कहे जाते बल्कि उसे उनके संग साझा करने को भेजे जाते हैं जिन्हें ईश्वरीय प्रेम की जरूरत है। श्रोताओं, हम अपने इस कार्य में सदैव इस बात को याद रखें कि यह हमारा कार्य नहीं है बल्कि यह उस ईश्वर का कार्य है जिन्होंने हमें जीवन दिया है और इसलिए यीशु हमें कहते हैं कि याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हमारे दैनिक जीवन के कार्य चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों, यदि हम उन्हें इस मनोभाव से करते हैं कि यह हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया कार्य है जिसे हम अपने लिए नहीं वरन उसकी स्तुति और महिमा के लिए करते हैं तो हम त्रित्वमय ईश्वर को अपने जीवन वचन और कर्म में वहन करते हैं। आइए हम त्रित्वमय ईश्वर से निवेदन करें कि वे हमें अपने जीवन में इस रहस्य को समझने की कृपा प्रदान करें जिससे हम उनकी निकटता का अनुभव सदैव करते हुए उनकी महिमा के लिए अपने कार्यों को पूरा कर सकें।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है समाचार। उत्तरी इटली के जेनेवा महाधर्म प्रांत के करीब 1,000 कैथोलिक युवा रोम की तीर्थ यात्रा पर हैं और आज वाटिकन के संत दमासो प्रांगण में संत पापा लियो 14वें ने उनसे मुलाकात की और मसीह के पीछे चलने की उनकी इच्छा को बढ़ावा दिया। ये युवा दृढ़करण संस्कार लेने की तैयारी कर रहे हैं जो दीक्षा के संस्कारों को पूरा करता है और बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति को पवित्र आत्मा के उपहार से सील करता है। संत पापा लियो ने कहा, हर धर्माध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी खुशियों में से एक दृढ़करण संस्कार देने का मौका है क्योंकि यह सच में पवित्र आत्मा का उपहार है। उन्होंने कहा, यह संस्कार लेना बहुत सुंदर है क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरता हमें उत्साह, ताकत और यीशु मसीह के पीछे चलने, हमेशा प्रभु को हाँ कहने और ऐसी दुनिया में विश्वास के साथ जीने की क्षमता देती है जो अक्सर हमें प्रभु से दूर ले जाना चाहती है। उन्होंने बताया कि अगला रविवार 24 मई पेंतेकोस्त रविवार है, जब कलीसिया पहले शिष्यों के अनुभव को याद करती है जिन्हें पवित्र आत्मा मिली और उन्होंने परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करना शुरू किया। संत पापा ने कहा कि हम अकेले विश्वास को नहीं जीते, हम इसे एक साथ जीते हैं और दोस्ती एवं समुदाय में ये रिश्ते बनाना यीशु के शिष्यों के तौर पर मजबूती से जीने का एक तरीका है। अंत में संत पापा ने युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे पवित्र आत्मा की पूरी कृपा पाने के इस पल का आनंद लें और इसे अपनी पूरी जिंदगी बनाए रखें। उन्होंने कहा, यह बहुत जरूरी है कि आप में से हर कोई प्रभु से यह वादा करे कि आप सच में उनके दोस्त, उनके शिष्य और उनके मिशनरी बने रहना चाहते हैं और आप विश्वास में मजबूती से बने रहना चाहते हैं। और आज संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में कई इटालियन बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों से मुलाकात की और उन्होंने समाज में बैंकों और जमा धन संस्थानों की भूमिका पर बातें की। उन्होंने कहा, आपके फाउंडेशन की भावना सभी को खासकर यह याद दिलाती है कि किसी बैंक में सबसे पहले पूंजी नहीं बल्कि लोग आते हैं और इन नंबरों के पीछे महिलाएं, पुरुष, परिवार होते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे माहौल में जब वित्तीय साधन का हाई लेवल कंप्यूटराइजेशन आपसी रिश्तों में मीडिएशन से ज्यादा मुश्किल और बनावटी तरीकों को लागू कर रहा है, आप इंसानी ध्यान की एक महान परंपरा के वारिस यह पक्का करने के लिए बुलाए गए हैं कि जो लोग आपकी सेवा लेते हैं वे एल्गोरिदम सिस्टम की ठंडक में अकेला महसूस न करें। उन्होंने कहा कि इन सिस्टम के पीछे आज भी पहले की तरह ऐसे लोग होने चाहिए जो सुनने के लिए तैयार हों और अच्छा करने के लिए तैयार हों। संत पापा ने कहा, पूंजी का एक जगह जमा होने से स्वार्थी जमाखोरी हो सकती है जो असमानता और गरीबी का कारण बन सकती है। संत पापा ने चेतावनी दी और बैंकिंग संस्थाओं से एकजुटता की नैतिकता और सुनने की इच्छा रखने की अपील की। और स्पेन के बाद संत पापा लियो 14वें की प्रेरित यात्रा एक बार फिर एक यूरोपीय देश फ्रांस में होगी। आज 16 मई को वाटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की कि देश के राष्ट्राध्यक्ष और कलीसिया के अधिकारियों एवं यूनेस्को के महानिदेशक के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए संत पापा लियो 14वें 25 से 28 सितंबर तक फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा करेंगे और उस संगठन के मुख्यालय का दौरा करेंगे। बयान में कहा गया कि यह संत पापा लियो की 5वीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इससे पहले वे तुर्की और लेबनान, मोनाको की रियासत और अफ्रीका की यात्रा कर चुके हैं। स्पेन की यात्रा 6 से 12 जून तक करेंगे और शुक्रवार 15 मई को संत पेत्रुस महागिरजाघर में संत पापा लियो 14वें ने कार्डिनल पॉल एमिल शेरिंग के अंतिम संस्कार की अध्यक्षता की, जिनकी 12 मई को 79 साल की उम्र में मौत हो गई। उन्होंने दिवंगत स्विस कार्डिनल के दशकों तक परम धर्मपीठ के प्रति निष्ठावान सेवा के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें ईश्वर की दया पर छोड़ दिया।
अपने प्रवचन में संत पापा ने उस महान और पवित्र पल पर विचार किया जिसमें कार्डिनल अब प्रभु के सामने इस जीवन में किए गए अच्छे कामों का इनाम और इंसानी कमजोरी से हुई कमियों के लिए माफी के लिए खड़े हैं। संत पापा लियो ने कार्डिनल शेरिंग को कलीसिया का एक समर्पित सेवक बताया जिन्होंने अपना आधा से ज्यादा जीवन परम धर्म पीठ की राजनयिक सेवा में बिताया। दुनिया भर में परम धर्म पीठ के प्रतिनिधि और वाटिकन राज्य सचिवालय में अपनी सेवा दी। संत पापा ने कहा कि हालांकि अक्सर लोगों की नजरों से दूर रहकर उन्होंने सेवा की, लेकिन उनकी सेवा ने ईश्वर के राज्य को बढ़ाने में बिना थके योगदान दिया है। संत पापा ने एक पुरोहित और एक राजनयिक दोनों के तौर पर स्वर्गीय कार्डिनल के काम की तारीफ की और बताया कि कैसे उन्होंने लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाने और स्थानीय कलीसियाओं एवं परम धर्म पीठ के बीच मेल जोल को मजबूत करने के लिए धैर्य और त्याग के साथ काम किया। उधर विश्व सामाजिक संचार दिवस को मनाने के लिए संचार विभाग ने गुरुवार 21 मई को परम धर्मपीठ उर्बान विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। विश्व दिवस का विषय इंसानी आवाजों और चेहरों को बचाना संत पापा लियो के संदेश को दिखाता है और उस भावना को दिखाता है जिसमें आयोजक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लोगों, समुदाय और देशों की जिंदगी पर इसके असर पर बातचीत करने के लिए अकादमी, संस्थानीय प्रतिनिधियों, हाईटेक एक्सपर्ट और पत्रकारों को बुलाया है। इसका उद्देश्य संत पापा की इस बात के जवाब में सोच विचार और बातचीत का एक पल होना है कि संचार के तोहफे को इंसानियत की सबसे गहरी सच्चाई के तौर पर संजो कर रखें। उधर यूक्रेन के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास 13 और 14 मई को यूक्रेन में रूस की खास तौर पर तेज बमबारी के बारे में बताया और मानवतावादी कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि उन पर जानबूझकर निशाना बनाया गया ताकि लोगों को मदद ना मिले। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।